वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम।

जय र जीवन जन एक राम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम

तया विसृज्यते विश्वम् जगते चक्षुराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच।

परमेश्वरि यच्च किञ्चित् परिवस्तु सदसर्वाखिलाद्विगे तस्य सर्वस्य आशक्ति सा त्वम् किम् सूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यो जगत् सोऽपि निद्रावशम्यकस्वाम् स्तोतुमेश्वर कृष्णशरीरग्रहणमहमीशान एव च कालिदासे गोस्तस्वाम् प्रस्तोतुम् शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थम् प्रभावयस्वैर्देवि संस्कृता मोहयो मृगादर्श

वाच वञ्चिताभ्याम् विधिला सर्वमापोपयन् जगत् विलोक्यताभ्याम् भवितो भगवान् कमलेक्षणा आवाम् दैन्यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता विश्ववाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रकलाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्कृता स्वयम् प्रभावनस्या देव्यासु भूयश्रृणुवदान्ते जगदम्बार्पणमस्तु अस्य श्रीमध्यमचरित्रस्य विष्णुर्षि महालक्ष्मीदेवता।